कदीम ज़माने से मुफक्किरीन और सियासतदानों ने मंसूबा बंद और मुनज़्ज़म शहरों पर गौर किया है। यह हासिल करने वाला पहला शख्स मेलेटोस का हिपोदामस होगा। वो अपने तैयार करदा मॉडल को इस शहर में नाफिज करता है जिसमें वो रहता है, और मिलेटोस अनातोलिया का पहला मंसूबा बंद शहर बन जाता है। इस मॉडल के साथ जो दोबारा काबिल अमल निज़ाम के लिए मौजू है, पेचीदगी ख़त्म हो जाती है और शहर मुनज़्ज़म हो जाते हैं। ये मालूम है कि कौन सी इमारतें वाक़ होंगी और इन ढांचों के लिए कितनी जगह मुख्तस की जाएगी। इस तरह बेतरतीब और बेकाबू बस्तियों को रोका जा सकता है और अकली और फ़ाल शहरी कारी शुरू हो जाती है। यह रियासत को निजी मलकियत की ज़मीन को कंट्रोल करने की भी इजाज़त देता है। मंसूबे का एक अहम तरीन नुक्ता शहर की मुस्तकबिल की ज़रूरियात और आबादी को मद्देनज़र रखते हुए शहर का डिज़ाइन है। यकीनन ग्रेड प्लान की मुखालफत करने वाले भी हैं। उनका दावा था कि यह शहरों को बेरूह और एक जैसी जगहों में बदल देता है। ताहम मनसूबाबंदी का ये मॉडल सैकड़ों साल पहले आज के शहरों में तलाश किए गए बेशतर मयारात को पूरा करता है। मेलेटोस, जो कि फ़लसफियों के नाम से जाना जाता है, मुस्बत साइंस की राह हमवार करता है और उसे शहरी साइंस के मरकज़ के तौर पर जाना जाता है। फ़िक्र के इस इर्तका से मेलेटोस को भी अपना हिस्सा मिलता है और इस शहर में मिसाली माहौल और मिसाली शहर का ख्याल उमड़ आता है। शहर की मनसूबाबंदी इस मनसूबे से शुरू होती है जो पहली बार साइंसी तौर पर हिपोदामस ने तैयार की थी। हिपोदामस सदियों पहले का है जिसने एक मसावी मनसूबाबंदी का मॉडल पेश किया जो लोगों को पहले अहमियत देता है। नस्ली खान देर में जी ओलू के कलम से तहरीर करदा ये प्रोग्राम आपने सुना। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।

0: संभाल रहा है। युमाकली ने मजीद कहा कि जंगलात आने वाली नस्लों के लिए छोड़ा जाने वाला सबसे कीमती असासा हैं। उन्होंने मिशन पर रवाना होने वाले अमले और मैदान में बरसरे पैकार तमाम टीमों के लिए कामयाबी की तमन्ना का भी इजहार किया।
1: फ्रांसिस सदर मैनुअल मैक्रोन ने अपने मुल्क में कई हफ्तों से जारी आग से निपटने के लिए आग बुझाने और तैयारी भेजने पर तुर्किया का शुक्रिया अदा किया। मैक्रोन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में ज़रात जंगलात इब्राहिम की फ्रांस को आग बुझाने तैयारी भेजने के बारे में जारी करता एक पोस्ट का हवाला किया। मैक्रोन ने तुर्की जबान में और कौमी परचम के साथ की गई पोस्ट में शुक्रिया तुर्किया दर्ज किया। ज़रात जंगलात ने अपनी पोस्ट में बताया था सदर रजब तैयब एर्दोगान के हुक्म पर स्पेन के बाद फ्रांस को भी मदद की दरख्वास्त पर दो आग बुझाने तैयारी भेजे गए हैं। तारीख की सबसे बड़ी जंगलाती आफात में से का सामना करने में फ्रांस में साल के आगाज से अब तक 1,16,000 हेक्टर रकबा जलकर खाकस्तर हो चुका है। मुल्क के जनूब में वाक़ ग्रोंदे सूबे में तकरीबन एक हफ्ते से जारी आग में 42,000 से ज्यादा हेक्टर रकबा जल गया।
0: शुमाली कब्रिस तुर्क जमहूरिया के वज़ीर आज़म उनाल उस्त एल ने अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अपने मुल्क को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि मुनक़सिम जज़ीरे पर मुस्तक़िल तस्फ़िये का यही वाहिद तरीका है। उनके यह बयान अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस के जज़ीरे के 3 रोज़ा दौरे से कबल सामने आए हैं, जहाँ वो तुर्क कब्रिसी और यूनानी कब्रिसी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमन की कोई भी कोशिश दिहाइयों पुरानी तजावीज़ पर इन्हिसार करने के बजाय मौजूदा सियासी हकीकत की अक्कास होनी चाहिए। उन्होंने अक़वामे मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वह अपने देरीना वफाकी हल से पीछे हट जाए। उनका इस्तदलाल था कि यह जजीरा अब अपनी अपनी जमहूरी निज़ामों वाली दो अलग अलग रियासतों पर मुश्तमिल है। वज़ीर आज़म ने अक़वामे मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन पर भी तनकीद की और उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो 2004 के अन्नान प्लान रेफरेंडम के बाद किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रहे और शुमाली कब्रस पर मुसलसल इक़्तिसादी पाबंदियों की इजाज़त दी।
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्किया का F-35 जंगी तैयारों की मुमकिन फरोख पर इसराइल वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुखालफत को मुस्तरद करते हुए इस बात पर जोर दिया कि वाशिंगटन अपने गैर मुल्की हथियारों की फरोख का फैसला खुद करता है। एयरफोर्स वन पर नामनकारों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि कोई भी गैर मुल्की रहनुमा अमरीकी दिफाई बरामदात के फैसलों पर असरअंदाज नहीं हो सकता। इस बात का इतराफ़ करते हुए कि अंकरा इसराइल नेतन्याहू की हमायत नहीं करता, उन्हें तुर्किया को मजबूत काबिल इत्माद इत्तेहादी करार दिया, शाम मशरक़ वुस्ता में इसके स्ट्रेटजिक किरदार को उजागर किया। ट्रंप के तासरात तुर्कन अंकरा में हालिया नेटो सरबरा इजलास के बाद सामने आए, जहाँ उन्होंने तस्दीक की थी कि इंसामिया दोनों मुल्क के दरमियान दो तरफा ताल्लुक को मजबूत बनाने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर तुर्किया को F-35 जंगी हथियारों की फरोख्त बहाल करने पर गौर कर रही है।
0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर जारी सफारती मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अमरीका ईरान के खिलाफ इंतहाई ताकतवर फौजी ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार है। आज नेतन्याहू के साथ अहम मुलाकात से कबल इसराइल के चैनल 12 से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि सफारती हल तक पहुँचने के लिए वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। अमरीकी रहनुमा, जिन्होंने पहले ऐलान किया था कि वह इलाकाई शराकत दारों की दरख्वास्त पर मनसूबा बंद फौजी हमलों को मुअत्तल कर रहे हैं, इस बात पर जोर दिया कि अगर मुज़ाकरात मुअत्तल हो जाते हैं तो वाशिंगटन कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: ईरान से खारजा अब्बास अराग़ची ने पीर को अपने मिस्र में इस्तेहकाम बहाल करने के इलाके तआवुन के फरोग का मुतालबा किया। तनाव के हवाले से अमरीकी जारह को मोड़ते इल्ज़ाम ठहराया। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे IRIB ने मंगल को इतला दिया कि अराग़ची ये बातें ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदरुल बसरुज़ीदी, सऊदी अरब वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से अलग-अलग टेलीफोनिक बातचीत के दौरान कहीं। रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत में दो तरफा ताल्लुक ताज़ा तीन इलाके सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अराग़ची ने इलाके तआवुन को मजबूत करने और खत्ते में इस्तेहकाम की तरवीज के लिए मुश्तरक सफारती कोशिशों में मजीद तेज लाने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि अब नहर बस अमरीका के जरा इकदाम का नतीजा अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल का खात्मा किया जाए। जुमे के बाद से खत्ते में मुहताज सकूत रहा जब अमरीका ईरान ने हमले रोक दिए। इस कशीदगी के दौरान अमरीका ने ईरान पर हमले किए जबकि तेहरान ने चंद अरब मालिक में अमरीकी फौजी तनसीबात साजुमान को निशाना बनाकर जवाब दिया।

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: यह कम अक्टूबर 2025 से 30 जून 2026 तक के दौरानी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाली झड़पों में 499 आम शहरी हलाक हुए। अकवाम तहदा के

0: ड्रोन्स को नाकारा बनाने का दावा किया। ताहम उनका कहना था कि ये ड्रोन्स इसराइली फिजाई हदूद में दाखिल नहीं हुए थे। ये पेशरफ सऊदी अरब के उस ऐलान के बाद सामने आई है जिसमें पीर के रोज़ बताया गया था कि उसने इराक से दागे गए मुतादा ड्रोन्स को नाकारा और तबाह कर दिया है, जो मुल्क में तेल की तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। किसी भी ग्रुप ने इन ड्रोन वाकयात की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। इतवार के रोज़ ईरानी अस्करी तर्जुमान ने कहा कि गुज़िश्ता दो दिनों के दौरान ईरान के खिलाफ अमरीकी हमले रुकने के बाद तेहरान ने अपनी फौजी कार्रवाइयाँ रोक दी हैं। एक्सियोज ने रिपोर्ट किया था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन दो हफ्तों तक जारी रहने वाले रोज़ाना के हमलों के बाद फौज को ईरान पर मजीद हमले रोकने का हुक्म दिया है।
1: मस्जिद अक्सा के इमाम खतीब शेख अकरमा सबरी ने कहा, इसराइली हमले खा कितने ही शदीद क्यों ना हो जाए, फलस्तीनी अवाम मस्जिद अक्सा से कभी भी दस्तबरदार नहीं होंगे। शेख सबरी ने इन ख्याल का इजहार बाबुल असबात मुजाहमत की 9वीं सालगिरह के मौके पर किया, जिसके नतीजे में इसराइल पुलिस की जानब से 2017 में मस्जिद अक्सा में नस्ब किए गए इलेक्ट्रॉनिक तलाशी के दरवाजे हटा दिए गए थे। इस फतह को एक तारीखी संग मील करार देते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया, मुकदस मकाम की इस्लामी खुद मुख्तारी को बरकरार रखा गया है, वहां की एक इंच जमीन भी नहीं छोड़ी जाएगी। मकबूजा बैतुल मुकद्दस और फलस्तीन के साबिक मुफ्ती आजम ने हाल ही में बढ़ती इसराइल खिलाफ वर्जियों की तरफ भी तवज्जो दिलाई और इस बात पर जोर दिया, अपनी छापों को कभी भी मामूल नहीं माना जाएगा, यह गासिब कुवतों को मुकद्दस मकाम पर कोई कानून या तारीखी जवाब फ्राहम नहीं करते। उन्होंने कहा, फलस्तीन अवाम बड़ी कुर्बानियां देकर मस्जिद अक्सा की चौकीदारी जारी रखे हुए हैं, जबकि उन्होंने मुस्लिम उम्मा पर जोर दिया वो इस मुकद्दस अमानत की हिफाजत करे और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे।
0: अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल और लबनान के दरमियान हाल ही में कायम करदा अमरीकी ज़ेर क़यादत अमन फ्रेमवर्क को मज़ीद फ़रोग देने के लिए सिक्योरिटी मुज़ाकरात अगले हफ्ते रोम में दोबारा शुरू होने वाले हैं। तकनीकी उमूरी ग्रुप्स 4 से 6 अगस्त तक होने वाले इजलास में बुनियादी तौर पर जनूबी लबनान में पायलट सिक्योरिटी जोन को बढ़ाने और दोनों ममालिक के दरमियान देरीना सरहदी तनाज़ात को हल करने पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। अमरीकी उमूर खारजा के हुकाम ने बताया है कि लुबनानी सदर जोसेफ ऑन और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान हालिया मुलाकात के बाद सफारती कोशिशों में नुमाया रफ्तार आई है।
1: तिबी अमले के मुताबिक गज़ा में जारी जंगबंदी माहदे की ताज़ा खिलाफ वर्जी में मजीद 3 फलस्तीनी हलाक और 11 जख्मी हुए हैं। एक तिबी इसराइल अनादोलुज अंसी को बताया, शिमाली कस्बे जबाली में एक इसराइल ड्रोन ने मोटरसाइकिल को निशाना बनाया जिसके नतीजे में एक फलस्तीनी हलाक और 3 जख्मी हो गए। जानिका वस्ती शहर देलुल बलाह में शहरियों के इज्तमा को निशाना बनाने वाले ड्रोन हमले में मजीद एक फलस्तीनी हलाक हुआ। एक दूसरे ड्रोन हमले ने जुम्मी गजा के खान यूनिस के शुमाल में अकरारा पुल के करीब एक फलस्तीनी को हलाक एक को जख्मी कर डाला। इसराइल के मुताबिक खान यूनिस के जुर्म मगरब पे अलमासी में बेघर अफराद के खेमों की तरफ इसराइल फौजी गाड़ियों ने फायरिंग की जिससे 3 अफराद जख्मी हो गए। गजा शहर में इसराइल जंगी कश्तियों से साहल के करीब माहीगिरों पर फायरिंग से 3 माहीगिर जख्मी होने की इत्तलात है।
0: और अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने ऐलान किया है कि उसने ईरान के खिलाफ फिजाई हमलों की अपनी ताज़ा तरीन कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। चैनल एक्स पर एक बयान में सेंटकॉम ने कहा कि अमरीकी अफवाज ने गुज़िश्ता रात 9 बजे ईरान के खिलाफ फिजाई हमलों की कार्रवाई ख़त्म की। बयान में मजीद कहा गया है कि अमरीकी अफवाज ने ईरानी कमांड सेंटर्स, फिजाई दिफाई तनसीबात, मिज़ाइल और ड्रोन की सलाहियतों और साहिली निगरानी की तनसीबात को निशाना बनाया ताकि ईरान की आबने हुरमत से गुजरने वाले तजारती जहाज़ों को धमकियां देने की सलाहियत को मजीद कमज़ोर किया जा सके। इसके साथ ही सदाए तुर्की से उर्दू में खबरें ख़त्म हुई।
1: तो आइए सामिन अब अतिया की आवाज़ में एक तुर्की नगमा समाप्त पाइए। गाने का बोल है सेस सेदा योका।

की जंग का हिस्सा भी बन चुकी हैं। ताहम सूडान के मामले में काबिल ज़िक्र बात यह है कि अमरीका ने हालिया दौर में जंग में शामिल दोनों फरीकान के खिलाफ यकसा पाबंदियों की पॉलिसी अपनाई है। वाशिंगटन ने इससे कबल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस पर दारफोर में नस्लकुशी का इल्ज़ाम लगाया था और मोहम्मद हमदान दुकलू समेत तंजीम के आला अहदेदारों पर पाबंदियाँ आयद की थीं। इसके बाद फौज के कमांडर अब्दुल फताह अल बुरहान को भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया गया और अब बराह रास्त सूडानी रियासत के खिलाफ नए मुआशी इकदाम नाफिज कर दिए गए हैं। ये सूरत हाल जाहिर करती है कि अमरीका किसी एक फरीक की खुली हमायत करने के बजाय दोनों को बैन अवी कानून की खिलाफ वर्जियों का जिम्मेदार ठहराते हुए एक मुतवाजन मौक़ बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ज़मीनी धड़े इस नुक़ नज़र को इस तरह तस्लीम नहीं करते। सूडानी फौज और RSF दोनों ही वाशिंगटन पर मुखालिफ फरीक की बिलवास्ता हिमायत का इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। असल सवाल यह है कि इन पाबंदियों का अमली असर क्या होगा। सूडान की मईशत तवील अरसे से बैन अल-अक़वामी पाबंदियों, खाना जंगी और इदारा जाती तबाही की वजह से आलमी मालियाती निज़ाम से बड़ी हद तक कट चुकी है। मजीद बरआ सूडानी फौज और RSF दोनों ही बाज़ाब्ता बैंकिंग मैकेनिज्म के बजाय सोने की तिजारत, सरहद पार स्मगलिंग के नेटवर्क्स, गैर रस्मी मालियाती ज़राए और इलाकाई शराकत दारों के जरिए आमदनी हासिल करते हैं। इसलिए मुख्तसर मुद्दत में दोनों फरीकों की फौजी सलाहियत पर अमरीकी मालियाती पाबंदियों का कोई फैसला कुन दबाव पड़ने की तवक्को नहीं है। माजी में उमर अल बशीर के दौर में लगाई गई वसी पाबंदियां भी सिक्योरिटी अशराफिया को कमज़ोर करने के बजाय सूडानी मईशत और आम शहरियों पर मनफी असरअंदाज हुई थीं। दूसरी तरफ इस फैसले के अलामती और सफारती असरात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कीमियावी हथियारों के इस्तेमाल का इल्ज़ाम बैन अल-अक़वामी कानून के तहत संगीन तरीन इल्ज़ाम में से एक है। अमरीका का ये कदम आने वाले वक्त में यूरोपीय यूनियन, बरतानिया या बाज़ मगरबी ममालिक के लिए भी इसी तरह की पाबंदियों के फैसले लेने की राह हमवार कर सकता है। ये आलमी फौजदारी अदालत और अक़वामे मुत्तहिदा के इदारों के हवाले से नई कानूनी बहसों का सबब भी बन सकता है, ख़ासतौर पर ऐसे वक्त में जब सूडानी फौज अपनी बैन अल-अक़वामी साख को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और पोर्ट सूडान पर मबनी हुकूमत सफारती शनाख्त बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। इस तरह के इल्ज़ामात साख के लिए एक बड़ा नुकसान साबित हो सकते हैं। इसके बावजूद जंग के मुस्तक़बिल का तयन करने वाला बुनियादी अंसर पाबंदियों के बजाय फरीकान के बैरूनी इमदादी नेटवर्क्स ही रहेंगे। सूडानी फौज ने हाल ही में ख़ासतौर पर ईरान, रूस और कुछ इलाकाई शराकत दारों के साथ अपने फौजी ताल्लुकात को फ़रोग दिया है, जबकि RSF लीबिया, चाड और मुत्तहिदा अरब अमारात के ज़रिए मुख्तलिफ लॉजिस्टिक और मालियाती चैनल्स को बरकरार रखे हुए हैं। जब तक ये बैरूनी इमदाद मैकेनिज़्म जारी रहेगा, यक तरफा अमरीकी पाबंदियों के लिए जंग का रुख बदलना इंतहाई मुश्किल नज़र आता है। मज़ीद ये कि जब तक फरीकान फौजी फतह की उम्मीदें वाबस्ता रखेंगे, सफारती दबाव का मुज़ाकरात की मेज़ पर तब्दील होना भी मुश्किल नज़र आता है। नतीजतन अमरीका की ये नई पाबंदियां बैन अल-अक़वामी कानून के नुक्ता नज़र से एक अहम इखलाकी और कानूनी पैगाम देती हैं। ये नज़रिया कि कीमियावी हथियारों के इस्तेमाल के इल्ज़ामात को सज़ा के बगैर नहीं छोड़ना चाहिए, आलमी सतह पर हथियारों के फैलाव को रोकने के निज़ाम के लिए अहमियत रखता है। ताहम सूडान की मिसाल एक बार फिर यह साबित करती है कि पाबंदियाँ अकेले तनाज़ात को ख़त्म करने में नाकाफ़ी रहती हैं। जंग का खात्मा सिर्फ माशी दबाव के तरीकों से नहीं बल्कि बैरूनी क़ुव्वतों की फौजी मदद को महदूद करने, फरीकान को शामिल करते हुए मुज़ाकरात का नया प्लेटफॉर्म तैयार करने और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की रसाई को यकीनी बनाने से ही मुमकिन हो सकता है। बसूरत दीगर ये नई पाबंदियाँ अगरचे बैन अल-अक़वामी बरदारी के रद्दअमल के इजहार के लिए मानी खेज़ हैं, लेकिन सूडान में ताकत का तवाज़ुन बदलने के बजाय मौजूदा सफारती तातुल का हिस्सा ही बनी रहेंगी। और सैम के शुमाली और मशरक़ी अफ्रीका के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कान देवे जियोलू का इस मौजू पर तज़िया पेश किया गया। आइंदा हफ्ते तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। शोरश ज़दा अफ्रीका।